कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना महत्ति कृपा करके पधारे हुए महाराष्ट्र प्रवर्तक सी जी के चरणों में हम सभी की श्रद्धा पूर्वक वंदना। स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, अठाई तप करने की तैयारी में बैठे हुए श्रोतागण, कुछ जो किया मैंने यहां फांस रहे भाऊ रामेश्वर तेला होते याचा आवाज तुला सेट नहीं होता सुन, आता सेट कर नहीं तो तेला होते। कोई मैंने जो किया फिर हंसे क्यों आप? हंसने का कारण बाबू सिट भी अठे करने वाला है। हाँ अब हंस सकते तो इस बात पर तो देव टक बाबू सेठ की अठाई के बाद पर आप हंसते हैं वो मुझे समझ में आता है। कभी ऐसा भी कह देना ना कि बहू जी मेरा खाना खा रही है। जो शासन करे अनुशासन करे, जो शासन करे अनुशासन करे रामेश्वर, और जिसका शासन और अनुशासन व्यक्ति स्वीकार करे उसको गुरु और शिष्य कहते हैं। जिसका शासन और जिसका अनुशासन, अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयनम। अनुशासन कहते किसको है? आपके दिमाग में अनुशासन कहते ही इमरजेंसी आती है, आपके मन में अनुशासन कहते ही हिटलर आता है, आपके मन में अनुशासन कहते ही डिसिप्लिन आती है। तीर्थंकर महावीर उसको अनुशासन नहीं कहते हैं। तीर्थंकर महावीर के अनुशासन के दो ही डेफिनेशन है, दो ही आयाम है, दो ही डायमेंशन है, जिसमें से उपाय मिल जाए और अपाय से बचाओ, इलाज हो जाए और बीमारी से बचाव हो जाए, उसको अनुशासन कहते हैं। अनुशासन मोवायम दुक्कड़ से यह चोयनम, दुष्कृत्य से रोके और इष्ट सिद्धि करा दे, उसको अनुशासन कहते हैं। अनुशासन का मीनिंग मनमर्जी का हुक्म चलाना, उसको अनुशासन नहीं कहते हैं। सौभाग्य हम सभी का कि ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी मिली, ऐसा गुरु मिला कि जिसको अनुशासन करते आता था, और ऐसा शिष्य मिला जिसको अनुशासन का रहस्य समझ में आया। घोड़े को चलाना हो, बैल को चलाना हो तो हंटर लगता है, चाबुक लगता है। हाथी को कंट्रोल में करना हो तो हंटर से कंट्रोल नहीं कर सकते आप, उसके लिए क्या लगता है? केवल अंकुश लगता है। क्या लगता है? और अंकुश कितना छोटा होता है, उस अंकुश को चलाने वाला उसको यदि पता नहीं हो किस समय कहां पर अंकुश लगाना है, और जिसको इसका ज्ञान नहीं हो उसके हाथ में अंकुश चला जाए और वो हत्ती पर अंकुश का प्रयोग करे तो हत्ती वश में आएगा कि उन्माद में जाएगा? हाँ बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उन्माद में जाएगा, है ना। ऐसी थोड़ी सी गलती हो गई। थोड़ा से एक घंटा के लिए मैंने रोको कह दे। हो जाएगा, नहीं गया गया मिलास गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है, मां बाप के हाथ में बच्चों का अंकुश चला गया। ये सुन लो, मां बाप के हाथ में बच्चों का अंकुश चला गया और मां बाप को इसकी ट्रेनिंग ही नहीं है कि अंकुश कब कहां कैसे चलाना है। रुक जा भैया, रुक जा, और परिणाम क्या हो रहा है? आपके अंकुश से बच्चे सुधर रहे कि बिगड़ रहे? और जिम्मेदारी किस पर है? हत्ती ने संयम में रहना, सन्मार्ग पर चलना, यह हत्ती के हाथ में नहीं होता है। जब वो जंगल में है तो हत्ती के हाथ में है, लेकिन जिस समय वो जंगल छोड़ करके आदमी के बस्ती में आता है तो हाथ में महावत के होता है। और महावत की यही कला होती है। और मैं भी शायद आपने पढ़ा होगा कि एक बार किसी महावत से अंकुश गलत जगह पर चुभा गया और हत्ती ने सीधा सोन में पकड़ करके महावत को नीचे पटक दिया कि अंकुश सही जगह पर नहीं चुभा था। इसलिए अंकुश करना सब चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा अंकुश आप पर आ जाए, लेकिन अंकुश करने की कला प्राप्त करने का प्रयास मैं नहीं करता हूं तो मैं गफलत में जाता हूं। मेरे दादा गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, जिनको अंकुश चलाने की कला आती थी, और अंकुश चलाने की कला, अगला वाक्य ध्यान से सुनना, अंकुश से गधा कंट्रोल में नहीं आता है। अंकुश से कंट्रोल में कौन आता है? हाथी ही आता है। अंकुश से बकरी कंट्रोल में नहीं आती है, बैल भी कंट्रोल में नहीं आता है। अंकुश केवल हाथी के ही काम में आता है। और गुरुदेव हाथी थे और रतन ऋषि महासा महावत थे। तभी वो गंध हस्ती बन गए, गजराज बन गए, क्योंकि उन्होंने अनुशासन को अनुशासन के रूप में नहीं लिया। अनुशासन को बोलो, अनुशासन के रूप में नहीं लिया, कृपा के रूप में लिया। मुझे नहीं लगता है कि मैं यदि किसी को हाथ ऊपर करने के लिए कहूं और वो हाथ ऊपर कर पाए कि मां बाप ने उस पर किया हुआ अनुशासन उसको कभी मां बाप का प्यार लगा हो। मेरा तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं कहता हूँ बच्चों को, युवकों को, बेटियों को, माँ बाप तुम्हारे दुश्मन है क्या? हेलो, इसका जवाब तो दे सकते हैं अपना। माँ बाप दुश्मन है क्या? माँ बाप तुम्हें दुखी करना सपने में चाहेंगे क्या? फिर उनका अनुशासन तुम्हें दुखी क्यों होते हो तुम? व्हाट इज द रीजन? कोई मां बाप सपने में अपने संतति का बुरा नहीं चाहेगा, कोई मां बाप नहीं चाहेगा कि उसकी संतति दुखी हो। जो भी वो करते हैं कृपा से करते हैं, वात्सल्य से करते हैं, तो उनके शब्द सुनने चाहिए कि उनके प्यार को देखना चाहिए। बोलो, मैं चाहिए पूछा है, अपने क्या क्या नहीं पूछ रहा हूं। क्या देखना चाहिए? अंदर का इंटेंशन देखना चाहिए कि शब्द को सुनना चाहिए। किसको सुनना चाहिए? प्यार को सुनना चाहिए। और यदि प्यार को सुन पाए तो तुम भी ऋषि आनंद बन सकते हो। यदि उस प्यार को मैं सुन पाऊं तो मैं भी वैसा हो सकता हूं। और ये सबसे बड़ी कसौटी है। अनुशासन को स्वीकार करना आसान है, लेकिन अनुशासन में प्यार को महसूस करना एक कसौटी है। और ये कला गुरुदेव को सिखाई गई, और ये सिखाने वाले महासती जी को आज याद करना है। रतन ऋषि जी मर सब अनुशासन करते थे, और ऋषि आनंद जवाब नहीं देता था, लेकिन चेहरा उतर जाता था, चेहरा उदास हो जाता था, चेहरा मुरझा जाता था। स्वीकार करते थे, शिकायत नहीं करते थे, क्वेश्चन मार्क नहीं करते थे, आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। जैसा रतन ऋषि मां साहब कहते वैसा ही उठते थे, बैठते थे, चलते थे, लेकिन चेहरा उतर जाता था। और उतरा हुआ चेहरा देख करके जो आज भी आप लोग करते हो, उस समय भी करते थे लोग, कि छोटे संत का चेहरा उतरा हुआ देखते थे और चर्चा करते थे कि देखो ना, छोटा हमारा सामने गुरुदेव कितनी तकलीफ दे रहे, किस चेहरे है ना, ये तो उदास दुखी चेहरो। अभी दुखी चेहरे मतलब गुरुदेव ने तकलीफ दे, इतना दुखी हुए। और ये चर्चा लोग करते थे, आई नो आज भी लोग करते हैं। पक्की करते हैं, इनकार करना ही मत आप। और ये चर्चा रतन ऋषि जी महाराज साहब की गुरु भगिनी महासती श्री राम कौर जी महाराज साहब उनके भी कानों पर गई, और उन्हें लगा ये खाकर के भी भूखा रह रहा है। ऋषि आनंद खाकर के भी भूखा रह रहा है, पाकर के भी कंगाल हो रहा है। मिलता है लेकिन कंगाल हो रहा है, लेता है लेकिन संभालता नहीं है, ये रेगिस्तान बन रहा है। ये भीग नहीं रहा है, तप रहा है, इसने भीगना चाहिए। और महासत्य श्री रामकुर जी महाराज साहब रतन ऋषि जी महाराज साहब से बात करते हुए ऋषि आनंद के पास पहुंचे बात करने के लिए। बैठे, बात करने की कला होनी चाहिए। हेलो, रसोई बनाते आने चाहिए कि रसोई बनाने की कला होनी चाहिए? रसोई करने की भावना होनी चाहिए कि रसोई करने की अकल होनी चाहिए? हेलो, नहीं, प्रेम बहुत है, बहुत प्रेम से रसोई बनाइए, लेकिन रसोई बनाने की अकल नहीं हो और थाली में परोसने के बाद किसी को आप कहो कि तुम्हारा प्रेम करें देख जो, मैं घना प्रेम से बनाई है, मारा प्रेम माते थाने डाउट है कहीं? हेलो, क्या कहेगा सामने वाला आदमी? वो किसको चखेगा? तुम्हारे प्रेम को चखेगा कि थाली में जो आया उसको चखेगा? बोलते लोग, महाराज साहब और बात कर रही है महासती जी, उनके पास बोलने की कला है, बोलना सबको आता है, बोलने की कला 10,000 में किसी एक को आती है, बोलना सबको आता है, बोलने की क्या लगता है, बस जुबान हिलानी है, लेकिन जुबान कैसी हिलानी हिलानी उसके लिए अक्ल लगती है। बस वो जुबान हिलाते समय सोच लेना अपने पास जुबान हिलाने की अक्ल है क्या। वो महासती जी के पास थे, महासती जी ऋषि आनंद को सुधारने के लिए गए थे, लेकिन सुधारने की कला उनके पास थी। अभी बहुत सारे लोग सुधारना चाहते हैं लेकिन सुधारने की अक्ल कला होती नहीं, इसलिए सामने वाला सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। मैं पेपर में पढ़ता हूं कई बार कि नकली डॉक्टर ने ऑपरेशन करे, पढ़ा नहीं? पढ़ा आपने? कुछ दिन पहले पेपर में खबर आई थी, पढ़ा ना? वो डॉक्टर तो पकड़ा जाता है नकली, इधर का नकली डॉक्टर नहीं पकड़ा जाता, क्या करें? और महासत्य जी के पास वो कला थी, गए और पूछा, छोटे महाराज अपने कारण से अपने गुरुदेव की बदनामी हो, ये अपने लिए अच्छा है क्या? जल्दी जवाब दो, आपके कारण से आपके गुरु की बदनामी हो, बोलो जल्दी। नहीं, बोल नहीं रहा थे, मुझे थाने चाली ना इस वाटे बने, आपके कारण से आचार्य भगवान के विषय में लोग कुछ बोले अच्छा है क्या? पक्का ना? ध्यान में रख जाओ, ध्यान में रख जाओ, ध्यान में रख जाओ। हाँ, अगला वाक्य में आखिरी बोलूंगा, बार नहीं बोलूंगा, कई बोलो को थका समझ में आ गए है ना। और ऋषि आनंद ने जवाब दिया, बोले नहीं, बोले फिर आपके कारण से आपके गुरु की बदनामी हो रही है, आपके कारण से आपके गुरु की, क्या बोले ऋषि आनंद? धीमे से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे कारण से गुरुदेव की बदनामी हो रही है? और महासती जी ने उनको कहा, पूछा, गुरुदेव आपको डांटते हैं? बोले डांटे, वो थाने बुरो लागे? बोले लागे, पर मैं कि बोलू को नहीं, लेकिन थको चेहरो उतर जावे। घड़ी चुप, घड़ी चुप, अब चेहरा तो उतरता है, चेहरा तो उतरता है ना, आपका भी उतरता है ना, हाँ उतरता है, उतरता है ना, उतरता है। और महासती जी ने कहा कि आपका चेहरा उतरा हुआ देख करके लोग आपके विषय में नहीं बोलते, आपके गुरु के विषय में बोलते हैं कि गुरुदेव चेला ने घनी तकलीफ देवे, देखो ना चेहरो किस उतरिया रो है। अब जिस घर से अठाई नहीं होगी उसके विषय में लोग ऐसी चर्चा करेंगे, देखो ना इरा माते गुरुदेव की कृपा बराबर नहीं हुई, इरा घर में से एक भी अठाई नहीं हुई। बोली लखनी बोली ना, हेलो। अरे भाई दिवाली के समय में किसी के घर में दिया नहीं जला तो लोग क्या कहेंगे, कितनो गरीब है वो, एक पंक्ति लगाओ को जितो भी तेल को नहीं रखा नहीं। हेलो, मैं था ने क्यों ना, मैं पूछू ना था ने, लोग बोलेंगे और कोई बोले या नहीं बोले प्रवीण ऋषि पक्का बोलेगा, और प्रवीण ऋषि जो बोलेगा वो तो सीधा ऑनलाइन पूरी दुनिया में पहुंचेगा, थे देख ले जो पीछे। और मेरा विचार चल रहा है कि मेरे पास बहुत अच्छी जवानों की टीम है, मैं जवानों की टीम को एक काम सौंप दूंगा, पूरे नगर का सर्वे करना किस घर में अठाई नहीं हुई है। और इस बार का नया कार्यक्रम करेंगे, जिसके घर में अठाई नहीं हुई उसका बोर्ड लगाएंगे, बहुत से ठीक रहेगा ना, नहीं क्यों नहीं, वो अठाई नहीं करे वो ठीक लागे थे, उरा घर से अठाई नहीं आवे वो ठीक लागे, अनुरा नाम में डिक्लेयर करे तो वो ठीक नहीं लागे। भाई गलती करने वाला गुनहगार की गलती पकड़ने वाला गुनहगार, करने वाला अरे मने ठीक नहीं के वो नहीं, इस बार प्रयोग करेंगे, अच्छा प्रयोग रहेगा। और महासती जी ने कहा ऋषि आनंद को कि थरो तुम्हारा चेहरा उतर जाता है और लोग गुरुदेव के विषय में चर्चा करते हैं, चुप कहीं बोले। फिर धीरे से महासिद्धि जी ने कहा उतरे रहो चेहरो अच्छो नहीं लगे, कही जिन घर में अठाई नहीं वो घर अच्छो नहीं लगे। सुन जो थे आज प्रवर्तक सिंह जी भी फरमाने वाले हैं। प्रवर्तक सिंह जी ने मुझे कल ही कहा मैंने काले बोलनो है तो मैं कि जरूर फरमाओ, और प्रवर्तक सिंह जी भी आपको यही बोलने वाले हैं ना,
1: अठाई का बोलोगे ना,
0: ओ और दूसरे क्या बोलूंगा बोल। अरे भाई भाई भाई की बात नहीं जानेगा तो क्या दूसरे से जानेगा, तो तैयारी कर ले जो पीछे। तो महास्ते रामकुर जी महाराज साहब ने कहा कि थे सहन भी करो, सहन भी करो, स्वीकार भी करो, ताकि गुरुदेव माते आस्था भी है, थाने मालूम भी कि गुरुदेव अपना भला के लिए बोले हैं, फिर चिर के नहीं होता रहो। ध्यान से सुनना, चुप। और महासती जी ने कहा आप यदि चेहरा उतारोगे तो तुम्हारे अगले जन्म में तुमको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। कि चेहरा उतारना इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उनको डिसलाइक करता हूं, और जिसको हम डिसलाइक करते हैं वो अपनी जिंदगी से दूर चला जाता है। गोशालक ने महावीर भगवान को डिसलाइक किया। अगले सैकड़ों जन्मों तक उसको वापस तीर्थंकर के दर्शन नहीं होंगे, ये भगवती सूत्र का विधान है। जिसको तुम डिसलाइक करते हो वो तुम्हारे जीवन में वापस आता ही नहीं। ऐसे गुरुदेव मिले, गुरुदेव कुछ भी बोले तो खुश रहना, कह रहे ना खुश रहना, और उसी आनंद में उस दिन संकल्प लिया, सेल्फ कमिटमेंट करी कि मेरा चेहरा कभी मुरझा हुआ नहीं रहेगा। द बिग कमिटमेंट, एन अनब्रेकेबल कमिटमेंट, अननिगोशिएबल कमिटमेंट। और हम सभी ने देखा है, चाहे जैसी परिस्थिति रही होगी, कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने गुरुदेव का चेहरा कभी मुरझा हुआ देखा है।

पहले भी कई तूफान आ कर गए और मैं दीक्षा लेने के बाद भी कई तूफान आ गए। जिसको उन्होंने शिष्य से बढ़कर प्यार दिया है, जिसको गुरु का प्यार नहीं मिला था, ऐसे संत को उन्होंने कुंदन ऋषि महाराज साहब से भी अधिक प्यार उनको दिया। और उसी संत ने, जिसने गुरुदेव के पास दीक्षा लेने के पचकान लिए थे, षड्यंत्र कर करके उसकी दीक्षा की आज्ञा स्वयं के नाम से मंगाई। इनको पता चला ये गर्म हो गए, मुझे पता चला, और फिर तो आपको पता है मैं इतना बोला कि वे शब्द आज मुझे दोहराने में भी संकोच होता है। अनि सबके बावजूद जब समय वो संत गुरुदेव के पास पहुंचा तो गुरुदेव ने उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए केवल एक बात कही कि मुनि जी, आप मुझे कहते पहले तो आपको यह सुनना नहीं पड़ता। किसको कहते करुणा का सागर? और गुरुदेव ने दीक्षा उन्हीं के पास कराई, उन्हीं का शिष्य बनाया। हम सब चिपते रह गए, पर चेहरे पर कोई शिकायत कि गुरुदेव ने उनको पूछा हो कि तूने ऐसा क्यों किया, नथिंग। वही प्यार उसके बाद, वही वात्सल्य उसके बाद कि एक बार वचन दिया कि मेरा चेहरा नहीं मुरझाएगा, तो मुरझाने ही नहीं दिया चेहरा। 1977 की बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गुरुदेव के लंबे समय के बाद अहमदनगर में पहले चौमासे के पहले की बात थी। विहार चल रहा था नगर जिले में, गर्मी के दिन थे। वडाड़ा नगर औरंगाबाद रोड पर का है, वहां पर प्रवास चल रहा था, पदार्पण हुआ। गर्मी के दिन थे, उस समय स्थानक नहीं था और गर्मी के दिन थे, तो सुशुभ सुबह जब पहुंचे तो पश्चिम के बाजू में ठंडक थी, तो गुरुदेव का आसन वहां लगा दिया कि गर्मी नहीं लगेगी। शाम के समय उधर गर्मी हो गई, धूप आने लग गई, हवा नहीं। विलास बहु 100% सुबह आवाज बंद करने आओ, नहीं तो उठे खड़े रहने तो सुन। और मैंने जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, आप थोड़ा सा इधर विराम चाहो तो आपका आसन उधर लगा लेते, उधर हवा है, उधर ठंडक है, उधर लगा लेते। और गुरुदेव कोई गुलिस्तान के कोई अरबी फारसी का ग्रंथ उनके हाथ में था, उसका अध्ययन कर रहे थे। और मैंने कहा तो मेरी बात का उन पर कोई असर नहीं। कशाचे ते तुम्ही पा, मुझे सीधा जैसा भाव दिया मेरा आसन यहीं पर रहेगा। क्या कहा? मेरा आसन यहीं पर रहेगा।

0: अपने राम जी तो राम जी। मैंने कहा गुरुदेव इधर ठंडक नहीं, इधर गर्मी हो रही है, उधर ठंडक है, उधर हवा है, उधर लगा लेते, मेरा आसन यहीं पर रहेगा। अब अपने पेशेंस कितने आपको पता है, अभी तो फिर भी ठीक है, उस समय तो पेशेंस का ना अपना कोई कनेक्शन नहीं था, रिलेशन का तो सवाल ही नहीं। और मैंने गुरुदेव को कहा ये क्या जीत, आठे गर्मी है, उठे ठंडक है, नो इफेक्ट, वो अपनी मस्ती में। और ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि प्रवीण ऋषि चारों खाने चित मस्ती में झूमते हुए कहा, मर्द वही है जो हर हाल में खुश है। जिनको हालतें खुश रखते हुए मर्द नहीं होते हैं, जो सिचुएशन में झूमते हैं वे मर्द नहीं होते हैं। कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो जो अपने मस्ती में रहते वही मर्द होते हैं। दिया हुआ उत्तर एक दिया ही कमांडमेंट महासती जी को कि मेरा चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं रहेगा, मुरझा हुआ नहीं रहेगा। और कभी गुरुदेव का चेहरा मुरझा ही नहीं, चाहे जो परिस्थिति आई होगी, चाहे जैसे साइक्लोन आए होंगे। मैंने तो एक छोटे से साइक्लोन का जिक्र किया आपसे, आपको लगता होगा कि गुरुदेव के जीवन में कोई साइक्लोन नहीं आए, हम दोनों ही साक्षी हैं कि तुम्हारे और मेरे जीवन में तो साइक्लोन क्या केवल एक हवा की झलक है, उनके जीवन में तो इतने साइक्लोन आए कि जिसके सामने तो तुम और हम टिक ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद चेहरा कभी मुरझाया ही नहीं, मुरझाया ही नहीं। इतने प्रसंग याद आ रहे, इतने प्रसंग याद आ रहे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन चेहरा कभी मुरझाया नहीं। तो मैं आग्रह करूं गुरु भक्तों से, तपस्या में पित हो जावे तो भी 8 दिन चेहरों मुरझा तो नहीं रखना, मां तो दुखे तो भी चेहरा माते मुस्कान रखनी। हेलो, और सच बताऊं आपको, जिस दिन आपको पित होने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, पित्त शांत हो जाएंगे। एसिडिटी की सिंपल ट्रीटमेंट है, मां तो दुखे चेरो रोवन लागो तो माँ तो उतरे की चढ़े ज्यादा चढ़े ज्यादा, और माँ तो दुखे और चेहरा मत स्माइल रखी तो माँ तो बिना दवा रो उतर जाए। यस और नो? यस। नींद मारा साहब नींद नहीं आवे, अरे हंसता हंसता बोलना मारा साहब नींद नहीं आई, भनु मैं ध्यान करियो, नींद नहीं आई भनु मैं गुरुदेव माला गिन तो बैठे हो। अरे नींद नहीं आई तो रोना क्या, उस नहीं आई तो उसका उपयोग कर लेना, उसका उपयोग कर लोगे तो नींद आना और अच्छा हो जाएगा, नींद नहीं आनी और अच्छी बात हो गई। फालतू समय नींद में जाओ तो गिरम गयो। ओम आनंद गुरुवे नमः, ओम आनंद गुरुवे नमः, ओम आनंद गुरुवे नमः के माला में चला गया तो नींद नहीं आना फायदे में रहेगा नुकसान में रहेगा? हाँ, भूख लागी ओम आनंद गुरुवे नमः, ओम आनंद गुरुवे नमः, कमर दुखन लागी ओम आनंद गुरुवे नमः, ओम आप हंस सकते हो, आप हंस सकते हो। मैं ये अगला जो प्रश्न आपको देने जा रहा हूं, वो मैं प्राय सूत आराधना के समय देता हूं, लेकिन आप हंस रहे हो इसलिए अभी दे रहा हूं। लुधियाना में चौमासा था, प्रवर्तक सिंह जी के सेवा में ही, और वहां पर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के विरासत को संभालने वाले भोले बाबा, उनके चरणों में चौमासा था। निर्वाण कल्याण कम में तेला करता हूं और वहां भी मैंने तेला शुरू किया है। पहले दिन आराधना पूरी करके कमरे में गया और ऐसे चूहे की दौड़ पेट में उछल कूद कर रही थी। तो मैंने सोचा प्रवीण ऋषि मुश्किल है 3 दिन निकालना है, ऐसा ही लेट गया। जब महाराज भोले बाबा की गोदरी की आवाज आई तब उठा, ऊपर गया और मुझे आते हुए उन्होंने देखा और मुझे देखते हुए बोले, हम तो रोटी खा रहे हैं, तुम प्रभु का रस पी रहे हो। हेलो, क्या कहा? हम तो रोटी खा रहे हैं, तुम प्रभु का रस पी रहे हो। और धीमे से मस्तक पर से हाथ फेरा, आप उसको मिरेकल कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन सत्य बात बता रहा हूं। उसके बाद ना भूख लगी न प्यास लगी। तीन दिन किधर गए पता ही नहीं चला। जैसे अभी मैं अठाई के लिए प्रवर्तक सिंह जी की परमिशन मांगता हूं, वो देते नहीं। कल मैंने पूछा नहीं, कुछ नहीं, तो भी कहते तुमने अठाई नहीं करनी। मैंने कहा कमाल हो गया, मैं सबको अठाई करा रहा हूं, नहीं कहते तूने अठाई नहीं करनी। ऐसे में गुरुदेव से भी बहुत बार तपस्या के लिए परमिशन मांगता था और गुरुदेव ने मुझे कभी जल्दी से परमिशन दी नहीं। एक बार उन्होंने, मैं बार बार कहता था, तो एक बार उन्होंने कह दिया ठीक है कर ले, 28 करने थे कर ले, पर 2 शर्तें बोले। एक, भूख लागेला तो पान नो करेला, कहीं भूख लागेला तो पान नो करेला और सेवा में खंड नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक, और तब से लेकर था आज दिन तक प्रवीण ऋषि उपास के पचकान भी शुभ नहीं लेता है। कि गुरुदेव को दिया हुआ वचन है कि भूख लगेगी तो खाऊंगा, शाम को ही पचकान लेता हूं। और इस बात के साक्षी प्रवर्तक सिंह जी भी हैं और तीर्थ सुषी जी भी हैं। कई बार मुझे, मैं तेले की शुरुआत करता हूं और बेले के दिन भूख लग जाती है, पचकान मेरे लिए वही नहीं रहते, मैं उसको कह देता हूं कि वो गुत्सी लेकर आ, कि मेरे लिए तपस्या बाद में, मेरे गुरु को दिया हुआ वचन पहले। और जिस समय मैं एकांत में था और उस समय साधना में खड़ा था और एक साथ आठे के पचकान हो गए, कोई मन में विचार नहीं था, कोई मन में सोच नहीं था कि आठाई करनी है। आठाई के पचकान होने के बाद पता चला कि मेरे आठाई के पचकान हो गए। एक पल के लिए मन में चिंतन आया कि प्रवीण कैसे होगा, जंगल में तो गर्मी के दिन है। और सेकंड पल में मन में एक ही थॉट आया, मैंने अठाई सोची नहीं, मैंने अठाई मांगी नहीं, जिसने पचकाई उसकी जिम्मेदारी। और आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि 8 दिन में बियासना जैसा भी नहीं लगा, बियासना जैसा भी नहीं लगा। जो भक्ति शक्ति का जागरण नहीं करे वो जनरेटर पर नहीं है क्या? जनरेटर पर नहीं है तो संगीत होता चलो चलो आवाज में चलो ना। जिस भक्ति से शक्ति का जागरण नहीं होता उसको मैं भक्ति नहीं कहता। शक्ति का जागरण जिससे होता है वही भक्ति है। भक्त कभी कमजोर नहीं होता और जो कमजोर होता वो कभी भक्त नहीं होता है। जांबुवत ने हनुमान से कहा क्या सोचता है तू? तो एक हुंकार भर राम का नाम लेकर के और छलांग लगा इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचेगा और वो हनुमान था। सामने समुद्र था। उसे कृष्ण ने पूछा हुंकार भरी जंप लगाई और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। समर्थ चा दासा वक्र नजरे को न पाए। जो भक्ति वही जो शक्ति का जागरण कराए। जिससे शक्ति का जागरण नहीं हो वो भक्ति ही नहीं। आज दोपहर में क्योंकि प्रवर्तक सिंह जी को फरमाना है इसलिए मैं आज पहले 5 मिनट पहले पूरा कर रहा हूं। आज दोपहर में 3 बजे अपनी भक्ति को कैसे शक्ति में बदलना है, कैसे गुरुदेव की शक्ति लेना, कैसे तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति लेना। मेरे उदाहरण मैंने बहुत दिए। यदि तीर्थेश्वर शिव जी परमिशन दे तो उसका उदाहरण दे दो।
1: हेलो
0: दो हजार 2015 का नासिक रोड चतुर्मास संवत्सरी का उपवास है ना। वो उसको ही पूछना रात भर कितना क्या बोला वो
1: संत हनुमान
0: कई
1: संत हनुमान
0: संत हनुमान एक उपासना और यहां 2009 में जो उपास किया था उस समय भी हालत वही थी इसकी। और जिस समय मेरा ऑपरेशन हुआ मेरे एकांतर छूटे और मेरे साथ 4 संत थे उस समय और मैंने सहज चारों को कहा मैं उपास कर नहीं सकता हूं लेकिन मन में मेरे चुभन है कि मेरा उपास छूट गया है। तुम यदि शुरू करोगे तो मेरे जख्म पर थोड़ा मलम लग जाएगा। और चारों ने एकांतर शुरू कर दिया। चारों ने एकांतर शुरू कर दिया और अभी तो आपको पता है नहीं पता मुझे पता नहीं। 1 महीने से ऊपर हो गया है। 18, 19 और 20वीं आईएमबिल की ओली कर रहा है। और ओले का मीनिंग होता है कि 18 एमबी पूरे हो गए उपास, पारने में उपास, आइंबिल के पारने में और उपास के पारने में आइंबिल। कर रहा है

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।